0: रही है और मेरी बहन क्या सोच रही है?
1: बस यही कि इस ईद पे कुछ अलग हो जाए।
0: अच्छा, मगर क्या?
1: वही तो, ईद कैसे मनाएं?

0: सलाम अलैकुम खान बाबा, ईद मुबारक।
1: वालेकुम सलाम राजेश, तुमको भी ईद मुबारक। तुम किधर है? तुम यहाँ पे ईद का चांद की तरह आता है।
0: खान बाबा, ये मेरा दोस्त अमर है।
2: ईद मुबारक।
1: तुमको भी ईद मुबारक।
0: आपसे एक जरूरी काम था।
1: बोलो बोलो बच्चा, क्या हाजिर है? विलायत? विलायत क्या चीज है? हमारे पास एक ऐसा आदमी है जो तुमको चांद पे बेच सकता है। बैठो बैठो, पहले तमाशा देखो बच्चा।

बेटा कुर्बानी का जानवर बहुत पहले से लेकर आना चाहिए ताकि उससे मोहब्बत और उनसियत कायम हो, और फिर जब हम उस पर छुरी फेरें तो हमारा दिल दुखे, और जब दिल दुखेगा उसकी मोहब्बत में तो अल्लाह के

0: तू गाती?
1: मेरी फैमिली में चाहे किसी का भी बर्थडे हो, मुझे तो गाना गाना ही पड़ता है। बहुत सारे गाने आते हैं मुझे।
0: मैं कनाडा भाग गया सिंगर बन।
2: रात बराती कंधा कोठे टप टप के जाना, तू सोखा समझे लगिया तोड़ निभाना।
0: तेरी बात।